0: श्रोता जनो, ऑकलैंड श्री सत्य साई संस्था तरफ थी आप सबने अमारा जय साई राम। दर रविवारे सवारे 7 वाग्या थी 10 मिनिट सुधी आप गुजराती भाषा में साई वचनामृत सांभळी शकशो। याद रखशो, दर रविवारे सवारे 7 वागे 10 मिनिट सुधी साई बाबानी अमृतमय वाणी सांभळी कृतार्थ थवा प्रयत्न करशो। आ छे प्लेनेट FM 104.6।
1: ऑकलैंड काउंसिल हेज द गोल ऑफ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल बाय 2040। दैट मींस रीसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग, रीयूजिंग एंड रीपर्पसिंग मटेरियल्स। Here's another zero waste tip on Planet FM. Waste to landfill per capita in Auckland has decreased since 2010, but we still have a long way to go. Existing services to reduce waste to landfill include using your